नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1500

0: 570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर ते स्टूडियो दी घड़ी दे अनुसार समा 7:08 दा। जी अज है 18 जुलाई ते 18 जुलाई दे इतिहास की गल करिए 18 जुलाई 1947 नू इंग्लैंड दे बादशाह जार्ज 6वें ने भारत ते पाकिस्तान की आजादी दे बिल ते दस्तखत किते सन।

0: कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: पारित दे वीडियो डन समर्पित एक शाम जी श्रोत्यो, श्री बलजीत शर्मा प्रोग्राम राखी सरहदां दे तहत लेके आ रहे ने आजाद भारत दे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दी अमर गाथा। मिति 19 जुलाई दिन है।

0: न तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: प्रोग्राम देवाचक बलजीत शर्मा ते तोहाडी रेडियो दोस्त आकांक्षा अरोड़ा, संपादन सतपाल ब्राड़। तां फिर सुनना ना भुलना, मिति 19 जुलाई दिन ऐतवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहदा दे।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 18 जुलाई दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोंगे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
4: जी प्रोग्राम दे इस हिस्से दे विच असीं तुहाडे नाल सांझियां करांगे कुछ अखबारां दीआं सुर्खियां। अंतरराष्ट्रीय खबरां दी गल करिए तां वाशिंगटन तों खबर लगी है जी, अमरीका वल्लों विद्यार्थियां ते पत्रकारां लई नियम सख्त, बिना सरकारी निगरानी दे मुल्क अंदर अणमिथे समय तक रहण दी नीति खत्म। थोड़ा जिहा विस्थार च खबर नूं लईए ते लिखिआ है, अमरीका ने विदेशी विद्यार्थियां पत्रकारां ते वटांदरा प्रोग्राम तहत आउण वाले लोकां लई वीजा नियम सख्त कर दित्ते ने। इस दे नाल ही दहाकिआं पुराणी ओह नीति खत्म हो गई है जिस तहत ओह बिना सरकारी निगरानी दे देश अंदर अणमिथे समय तक रह सकदे सन। ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਏ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, आकाशवाणी FM बठिंडा दे अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारस दे विच इस वार यानी के मिति 19 जुलाई नू मेहमान होंगे उगी कवित्री ते कहानीकारा दिलप्रीत गुरी। एह इना दे नाल मुलाकात दा दूजा भाग होवेगा, सो सुनना जरूर प्रोग्राम सुखन दे वारिस, मिति 19 जुलाई, दिन एतवार, सवेरे ठीक 10:30 बजे। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।
3: जी प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर, ते सजरी सवेर दे विच सिलसिला मॉर्निंग क्विज ते 0164-242-3331 डायल करके एक स्रोता टेलीफोन लाइन दे साडे नाल ने सवाल पुछदे उन्हां तों। हैलो
4: हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो।
4: हां जी कौन बोल रहे हो?
5: सुखजीत कौर जी, पिंड वल्लवाना ਤੋਂ।
4: जी सुखजीत कौर जी, सुखजीत कौर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
5: थैंक यू मैम।
4: हां जी फिर ਇਹ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ?
5: 5ਵੀਂ ਚ ਜੀ।
4: 5ਵੀਂ ਚ?
5: हां जी।
4: ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ?
5: ਜਾਣਾ ਜੀ।
4: ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਣਾ?
5: 8 ਵਜੇ ਜੀ।
4: 8 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ, ਹਨਾ?
5: ਹਾਂਜੀ।
4: ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ।
5: ਹਾਂਜੀ।
4: ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ?
5: 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀ।
4: ਹੈ
5: 28 ਜੀ।
4: ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जी समा हो रहा 7:43 का प्रोग्राम सजरी सवेर से सजरी सवेर के सिलसिला मॉर्निंग क्विज से मॉर्निंग क्विज 0164-22-43-331 डायल करके एक स्रोता टैलीफोन लाइन के साथ ने सवाल पूछते हैं उन्होंने। हैलो
3: हैलो
4: हैलो
3: हाँ जी कौन बोल रहे हो, नाम दस दो अपना।
4: दविंदर कुमार जी, पत्थम नगर बठिंडा।
3: जी दविंदर जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा।
4: थैंक यू।
3: हाँ जी दविंदर जी, की करदे हो तुसी?
4: मैम मैं क्लरिकल पोस्ट दी कंपर्शन यूनिवर्सिटी करवल दी।
3: जी ते सवाल जवाब दा सिलसिला चल रहा है, सवाल पूछिए तुहाडे तो।
4: हां जी मैम।
3: ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਈ, ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ SIR ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ SIR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜੀ। SIR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੂਗਲ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦੋ ਇੱਥੇ। ਹੈਲੋ, ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ SIR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन।

0: स्कीम जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नू बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जी सिफर 164-22-4331 डायल करके एक होर स्रोता टेलीफोन लाइन ते साडे नाल ने सवाल पुछदे उहनां तों। हैलो
3: हैलो
2: हां जी कौन बोल रहे हो?
3: मैम रविंदर कुमार।
2: रविंदर कुमार जी स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा। ते रविंदर कित्थों बोलदे हो?
3: मैम बठिंडा तों जी।
2: जी ते तुसी की करदे हो?
3: मैम टीचर सेंटर है, टीचर है जी।
2: जी करिए फिर अपना सवाल जवाब दा सिलसिला शुरू। एक टीचर तो सवाल पूछ लिए फिर असि अज
3: पूछ लो मैम।
2: चलो सवाल है ताडे लई।
3: हां जी मैम।
2: कारगिल विजय दिवस कदों मनाया जांदा है?
3: 22 दिसंबर मैम।
2: नहीं जी ए ताडा उत्तर गलत हो गया। शुक्रिया जी प्रोग्राम च फोन करन दे लई ते दा सही उत्तर मैं तुहानू हुणे दस रही हां। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

0: ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ 7:59 ਤੇ 50 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ, 8:15 ਵਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ।
1: The rain, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जाँच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु

0: और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को किया जा रहा है।
3: वर्किंग टू स्ट्रेंथन ईच अदर्स,
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR

0: ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
1: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sanjay Mattu. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting local culture, heritage and art.

0: साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ये रेलवे स्टेशन सारिया आधुनिक सहूलतों नाल लैस ने। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं भी रवाना किया जो अमृतसर ते वाराणसी नूं जोड़न वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव के सिद्धांत नूं ध्यान च रखते सारिया लई जीवन आसान बनाउण ते नवे मौके पैदा करने लिए वचनबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पंजाब च कई संपर्क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों से काम कर रही है जबकि पंजाब च कोई बीजेपी सरकार नहीं है। केंद्र विच बीजेपी की अगवाई वाली एनडीए सरकार पंजाब के विकास को यकीनी बनाने लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही।
0: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। आज मैं विशेष रूप से जालंधर के लोगों की भी सराहना करूंगा जिन्होंने स्वच्छता से स्वागत पहल के माध्यम से इस कार्यक्रम को और सार्थक बना दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने इल्जाम लगाया कि पंजाब सरकार केंद्रीय सरकार के फंडा की प्रभावशाली ढंग नाल वरतों करन च सफल रही है ते केंद्र सरकार दी योजनावां नूं आपणियां योजनावां वजों पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यह यकीनी बनाने लई हर संभव कोशिश कर रही है कि पंजाब के लोगों नूं सारियां केंद्रीय सरकार दी योजनावां दा लाभ मिले। श्री मोदी ने पंजाब के नौजवानों को खेडों में शामिल होने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए अवसरों का समय। उन्होंने कहा खेलो इंडिया खेड नीति पेश की गई है। आज भारत में एक नवी खेड आर्थिकता विकसित हो रही है। जलंधर का खेड निर्माण इको सिस्टम एक नवी आर्थिकता के केंद्र में है। उन्होंने सारे नौजवानों को खेडों में शामिल होने और खेडों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कल तेजा सिंह समुद्री को उनके 100वें शहीदी दिवस पर भी याद किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब च कई बड़े रेलवे प्रोजेक्टों पर काम कर रही है।
2: पंजाब में अपार संभावना है साथियों। लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुँचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से जींद ते सोनीपत दरम्यान भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगड्डी नूं भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कल केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच सेहत संभाल सिक्ख्या ते सड़क बुनियादी ढांचे नाल संबंधित लगभग 4,700 करोड़ के वख-वख विकास प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रख्या ते राष्ट्र नूं समर्पित किया। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIR RNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ 18ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਜੁਮਾਗਾਚ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ BSF ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਬਾਗ ਡੋਗਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੋਲਦੋਵਾ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ CB ਜੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਮੋਲਦੋਵਾ ਗਣਰਾਜ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੁਰਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ

0: शांति दीवी अपील की थी है। संयुक्त राष्ट्र मुताबिक पिछले महीने तो चल रहे चोन पूर्व विरोध प्रदर्शन दौरान कई लोगों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बारे भारत ते जापान दरम्यान गलबात चंगी तरह अगे वध रही है। मंत्रालय के बुलारे रणदीप जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया से कीतियां गईयां कुछ टिप्पणियां निजी विचारों के आधारित ने तथ्यों के आधारित नहीं है। उन्होंने दसिया कि प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेज रफ्तार नाल चल रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया से प्रसारित हो रहे उन्होंने दाव्यां दा खंडन किया है जिन्हां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म नूं उत्साहित कर रहे हैं जो नागरिकां नूं 22,000 दे शुरुआती निवेश लई 25 लाख दी महीनावार आमदन की गारंटी दिंदा है। पत्र सूचना ब्यूरो दी तथ्यां दी जांच बारे इकाई ने स्पष्ट कीता है कि वीडियो फर्जी है ते AI दी वरतों करके बनाया गया है। इस विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अजिही किसी भी निवेश योजना जां प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया। इसने नागरिकां नूं फिशिंग घोटालियां तों सावधान रहने की सलाह दी है जिस नाल वित्तीय नुकसान हो सकता है अते किसी भी शक्की लिंक ते क्लिक करन जां अजनबी लोकां नाल OTP सांझा करन तों बचन दी वी सलाह दित्ती है। टोक्यो विच जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स दे सैमीफाइनल विच PV सिंधु दा मुकाबला दुनिया दी चौथे नंबर दी खिडारन चीन दी चेन युफी नाल जारी है। PV सिंधु कल जापान दी साबका विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा दे अपने क्वार्टर फाइनल मैच तों हटन तों बाद आखिरी चार विच पहुंच गए सन। फीफा फुटबॉल विश्व कप विच तीजे स्थान लई अज फ्रांस ते इंग्लैंड दीआं टीमां आमो सामने होणगीआं। इह मैच भारतीय समय मुताबक रात 2:30 बजे मियामी स्टेडियम च शुरू होवेगा। फ्रांस दी विश्व कप मुहिम स्पेन तों हारन तों बाद खत्म हो गई सी। ते आखिर विच खास खबरां इक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना तहत पंजाब समेत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। अमृतसर से वाराणसी को जोड़न वाली संत रविदास एक्सप्रैस रेलगड्डी भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिमी बंगाल च सीमा सुरक्षा बल की सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। सीमा सुरक्षा बल संबंधित कई विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन नींव पत्थर भी रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मनुखी अधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर च चल रही अशांति से चिंता प्रगट की। प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सैमीफाइनल में PV सिंधु और चीन की चेन युफेई दरमियान मुकाबला जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी च तीजे स्थान लई फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड नाल। इस नाल ही राष्ट्र खबरों का यह बुलेटिन खत्म होता है। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर 1:10 ते। नमस्कार।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके फाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता RBI दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। RBI कहंदा है जानकार।
3: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 8:40 ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਦੋਸਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ।

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

यारो टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में

0: नफरत की लाठी।
1: माफ करना, तुसी सुनोगे मोहम्मद रफी की आवाज दे विच ए गीत।

0: The Sky is Pink, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रचना थी गुलजार की, संगीतकार प्रीतम।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए

तुम बिन टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आरको और साथियों की आवाजों में मनोज मुंतशिर के बोल थे। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

रांझणा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे जसविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान का संगीत था।

डेढ़ इश्किया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। गुलजार के बोल थे, विशाल भारद्वाज का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे,
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।

साहर बीबी और गैंगस्टर 3, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे नूरा सिस्टर्स अमित गुप्ता और साथियों की आवाजों में। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे पहुंचती है।

दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनकी गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने।

के गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपिंदर।

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद, और इन सब के बीच भूपिंदर

भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आर डी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12-स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आर डी बर्मन से हुई, और उसके बाद आर डी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आर डी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आर डी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आर डी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्त

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत विलायत खान साहब का था, आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीतम की।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

0: मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार, धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आप सबने देखा है चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा।
1: 1752 किलोग्राम दे कुल वजन दे नाल लैंडर ते रोवर नू एक चंद्रमा दिन दे प्रकाश दी म्याद लगभग धरती दे 14 दिन वास्ते चंद्रमा दे आले दुआले दा अध्ययन

FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक समा हो रहा है 10:30 ते 37 सैकेंड दा। ते हुण वेला हो रहा है पुराने पंजाबी फिल्मी ते नॉन फिल्मी गीतां दा।

जी, स्वागत है साढ़े सारे श्रोतियों का साढ़े अज के प्रोग्राम विच। तुहाडी प्यारी होस्ट ते दोस्त सुनीता सोनी वालों सारे श्रोतियों नूं प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। प्रोग्राम की शुरुआत करते हाँ फिल्म सस्सी पुन्नू दे इस गीत नाल, जिसनों आवाज़ां दित्तियां ने आशा भोंसले अते मोहम्मद रफ़ी ने। गीत रचना मुनसिफ दी ते संगीत दिता है रवि ने।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिन उदास रहते हो।

जी इसे ही तरह दे तुहाडे भेजे हुए प्यारे प्यारे शेयर ते कवितावां ते आधारित सिलसिला पैगाम जिसका आनंद तुसी मानोगे कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे दौरान। वाचक होंगे विजय लक्ष्मी। सो सुनना ना भूलना कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान सिलसिला पैगाम।

भारत दे वीरयो दन समर्पित एक शाम जी श्रोत्यो श्री बलजीत शर्मा प्रोग्राम राखे सरहदां दे तहत लेके आ रहे ने आजाद भारत दे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दी अमर गाथा मिति 19 जुलाई दिन एतवार शाम 5:30 बजे।

0: जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: प्रोग्राम देवाचक बलजीत शर्मा ते तोहाडी रेडियो दोस्त आकांक्षा अरोड़ा, संपादन सतपाल ब्राड। तां फिर सुनना ना भुलना, मिति 19 जुलाई दिन ऐतवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहदां दे।
2: प्रोग्रामा संबंधी जानकारी आकाशवाणी बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्राम निक्के निक्के तारे तहत दिन ऐतवार मिति 19 जुलाई नूं साडे मेहमान होणगे सरकारी मिडल स्कूल लहरा खाना दे विद्यार्थी। प्रोग्राम दे मेजबान नितेश कुमार। सो सुनना जरूर प्रोग्राम निक्के निक्के तारे मिति 19 जुलाई दिन ऐतवार सवेरे 10 बजे। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।
3: ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 10:45 ਤੇ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਭੰਗੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ। ਗੀਤ ਰਚਨਾ ਵਰਮਾ ਮਲਿਕ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਬਹਿਲ ਦਾ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, आकाशवाणी FM बठिंडा दे अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारस दे विच इस वार यानी के मिति 19 जुलाई नू मेहमान होंगे उगी कवित्री ते कहानीकारा दिलप्रीत गुरी। एह इना दे नाल मुलाकात दा दूजा भाग होवेगा, सो सुनना जरूर प्रोग्राम सुखन दे वारस मिति 19 जुलाई।

0: दिन ऐतवार सवेरे ठीक 10:30 बजे प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।
1: जी संदेश तो पहला तुसी सुनिया मुहम्मद रफी ते मीनू पुरशोत्तम दिया आवाजा विच फिल्म माही मुंडा दा ए गीत। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दी अखीरी पेशकश फिल्म पुत जट्टां दे दा ए गीत। इस गीत नू आवाज दित्ती सविता साथी ने ते संगीत सी महिंदर जीत दा।

FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है 10:59 ते 21 सैकेंड्स का। हुण तो कुछ ही पलां बाद यानी कि ठीक 11 बजे तुसी सुनोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। ते इस तों बाद 11:05 तों लै के 12 बजे तक आनंद माणोगे FM रेनबो दिल्ली दे प्रसारणा दा। करदे हां कुछ पल इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत आज दिन में 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट स्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज अचा वास्क्वेज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचू को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि श्री वांगचू को दिल्ली उच्च

न्यायालय के आदेश के बाद अस्पताल ले जाया गया। श्री वांगचुक पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यूफी के खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। दूसरे गेम में वे 15-10 से आगे थी, लेकिन चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेल ये जो पंक्ति है ना, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। वेल दोस्तों, इस भजन की ये जो पंक्ति है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा की रूह को बखूबी बयां करती है। जब महाप्रभु जगन्नाथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं ना, तो हर दिल से यही प्रार्थना निकालती है, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। आकाश में रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ, चलिए देते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट। वेल, बॉलीवुड से हॉलीवुड के सेलुलॉइड के कैनवस पर उन्होंने ह्यूमन इमोशंस के डिफरेंट शेड्स को इंटेंस तरीके से एक्सप्लोर किया है। उनकी एक्सप्रेसिव आईज, परफेक्टली टाइम पॉजेस, सटल बॉडी लैंग्वेज और एफर्टलेस डायलॉग डिलीवरी ने हर सीन को रियलिज्म और इमोशनल डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया है। कई अवार्ड्स और क्लॉथ की झालर उनके नाम जुड़ी है दोस्तों, जो उनके सिनेमैटिक

प्रेजेंस को सेलिब्रेट करती है। प्रियंका चोपड़ा है वो नाम दोस्तों, जिन्होंने सिनेमा के कैनवस पर अपनी कहानी को अपने टैलेंट, पैशन और वर्सटैलिटी के रंगों से लिखा है। आज यानी 18 जुलाई को सेलिब्रेट करनी है वो अपना बर्थडे। 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर झारखंड में जन्मी प्रियंका चोपड़ा का बचपन एक शहर तक सीमित नहीं रहा दोस्तों। उनके पेरेंट्स इंडियन आर्मी में फिजिशियन थे, इसलिए उनकी पोस्टिंग देश के अलग अलग शहरों में होती रही। इसी डाइवर्स अपब्रिंगिंग ने प्रियंका को नए लोगों से, अलग अलग कल्चर से और जिंदगी के विविड एक्सपीरियंस से रूबरू कराया दोस्तों। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत उन फैसलों से होती है जिनके बारे में हम खुद पता नहीं कर पाते। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की कहानी भी कुछ इस तरह है। उनकी मामा और उनके भाई ने उन्हें बिना बताए उनके फोटोग्राफ्स मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भेज दी और वहीं एक स्टेप उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। साल 2000 में प्रियंका ने मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का नाम रोशन करते हुए मिस वर्ल्ड 2000 का क्राउन अपने नाम किया। In 2002, she made her big screen debut in the Tamil film. Next year, 2003 में प्रियंका ने बॉलीवुड में एंट्री की और फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई में सेकंड फीमेल लीड के रूप में नजर आई। ये उनके फिल्मी सफर की शुरुआत थी जहां उन्हें धीरे धीरे अपनी मेहनत, टैलेंट और स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से हिंदी सिनेमा में एक पावर हाउस एक्ट्रेस के रूप में पहचान बनाई। मुझसे शादी करोगी, एतराज, ब्लैकमेल, क्रश, डॉन, ड्रोना, फैशन, दोस्ताना, अनजाना, अनजानी, रावण, डॉन 2, अग्निपथ, बर्फी, क्रश 3, मैरी कॉम, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, द व्हाइट टाइगर जैसे कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन किया। चाहे एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन का रोल हो, एक इमोशनल जर्नी से गुजरती हुई कैरेक्टर हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, प्रियंका ने हर किरदार को, हर न्यूएंस को फाइनेंस के साथ स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया। पद्मश्री से सम्मानित प्रियंका चोपड़ा के नाम यूं तो कई अवार्ड्स और एक्लॉड्स हैं। हॉलीवुड में भी अपनी नोटवर्दी परफॉर्मेंसेज ने से उन्होंने ग्लोबल सिनेमेटिक लैंडस्केप पर एक स्ट्रॉन्ग और एंड्यूरिंग प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है। दोस्तों, प्रियंका ने अपनी डेब्यू तमिल फिल्म में अपने वोकल टैलेंट से भी अपनी आर्टिस्टिक वर्सिटैलिटी शोकेस किया था। जी हाँ, इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक सिंगल रिलीज किए जिससे जिन्होंने उन्हें वोकल टैलेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। वी विश द मल्टी टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा वेरी हैप्पी बर्थडे। प्रियंका, कीप एंटरटेनिंग अस विद योर नोटवर्दी परफॉर्मेंसेस। फिलहाल हम जिस मूवी से उनका ट्रैक सुनेंगे वो है जी हाँ, दिल द स्काई इज पिंक का दिल ही तो है। और ये जो मेलेडी है ना, ये एक सोलफुल मेलेडी नहीं है बल्कि द स्काई इज पिंक का इमोशनल हार्ट बीट है। इस गाने में प्रियंका चोपड़ा अपने न्यूआंस और डीपली इमर्सिव परफॉर्मेंसेज से अदिति चौधरी के हर एहसास को इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारा है कि क्या कहे। तो चलिए इस ट्रैक को सुनते हैं।

0: द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

जी हाँ, वेलकम बैक। चलिए देते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट। सुखविंदर की आवाज शब्दों में कुछ ऐसे घुल जाती है बंधु। सुखविंदर सिंह की आवाज शब्दों में कुछ ऐसे घुल जाती है बंधु, जैसे झूमती नदियां खुद साजों की धुन गुनगुना रही हो। सुरों का ताना बाना कुछ ऐसा बनता है उनकी आवाज में, जैसे हर कहानी उनकी आवाज की कशिश से दिल में उतर जाती हो। विद हिज कैप्टिवेटिंग स्टेज प्रेजेंस एंड मेसमराइजिंग वॉइस, सुखविंदर सिंह द एक्लेम्ड इंडियन सिंगर कंपोजर एंड लिरिसिस्ट इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे गाइस। सुखविंदर सिंह का जन्म 18 जुलाई 1971 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। बचपन के शुरुआती दिनों में उनका रुझान स्पोर्ट्स, खासकर एथलेटिक्स और स्प्रिंटिंग की तरफ था, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली पैशन म्यूजिक है। इनफैक्ट अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में ही वो लोकल इवेंट्स और छोटी बड़ी गैदरिंग में गाने लगे थे। उनकी पावरफुल वॉइस, नेचुरल टैलेंट और म्यूजिक के टूवर्ड्स उनके पैशन ने धीरे धीरे सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। उनके म्यूजिक करियर के शुरुआती दिनों में सुखविंदर सिंह ने लेजेंडरी कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ म्यूजिक अरेंजर के तौर पे काम किया। इसी दौरान उन्होंने कई गानों में कोरस, वोकल्स और छोटे छोटे पोर्शंस को भी अपनी आवाज दी। प्लेबैक सिंगर के रूप में उन्हें पहला सोलो ब्रेक 1991 में फिल्म खिलाफ के गाने आजा सनम से मिला। इसके बाद 1997 में एआर रहमान के कंपोज गाने लकी लकी के साथ उन्होंने तमिल सिनेमा में भी अपना प्लेबैक डेब्यू किया। इसके बाद तो ए आर रहमान और सुखविंदर सिंह की म्यूजिकल पार्टनरशिप वक्त के साथ और भी मजबूत होती चली गई। दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक यादगार सुरीले नगमे दुनिया को दिए, जिन्होंने अपनी मेलेडी, जज्बात और सोलफुल अंदाज से हर जनरेशन के म्यूजिक लवर्स का दिल जीत लिया। लेकिन सुखविंदर जी के करियर का टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ मणि रत्नम की 1998 में रिलीज हुई फिल्म दिल से का सॉन्ग छैया छैया। रमता जोगी वो किसना है, ताल से ताल मिला जब दिल मिले करिए ना, नी मैं समझ गई डूमरो बाजे बंठन देखो डोलना गला गोड़ियां, उड़ी उड़ी जाए रुता आ गई रे स्लो मोशन।

0: हुर दबंग होले होले बहुत सारे कर हर मैदान फतेह भागे भारत भाग्य विधाता स्लो मोशन जैसे कई गानों को सुखविंदर सिंह ने अपने वर्सटाइल वोकल से ना सिर्फ आवाज दी बल्कि उनमें एक अलग एनर्जी जज्बा और इमोशनल डेप्थ भी भर दी। फिल्म 2008 की एक फिल्म थी जी हाँ असलम तो मिलियनेयर का ट्रैक जय हो में भी सुखविंदर सिंह की आवाज की कशिश सुनाई थी। इस ग्लोबली एक्लेम्ड सॉन्ग ने उनका नाम क्रेडिट परफॉर्मेंस में शामिल था। जय हो ट्रैक ने ना सिर्फ दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स का दिल जीता बल्कि 81 एकेडमिक अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का प्रेस्टिजियस ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद 52 ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर अ मोशन पिक्चर का सम्मान भी हासिल किया। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत के गौरव को बढ़ाने वाले सुखविंदर सिंह को अपनी बेहतरीन सिंगिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर से भी सम्मानित किया चुका है। सुखविंदर सिंह ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मराठी और बंगाली समेत कई भारतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज से सुरों से गाने सजाए हैं। जी हाँ, फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स के लिए उन्हें गाने गाए हैं जो उनकी मल्टी लिंग्वल सिंगिंग टैलेंट और म्यूजिकल रेंज को भी शोकेस किया है। सुरों के कॉस्मॉस में अपनी वर्सटाइल गायकी, मेस्मराइजिंग वॉइस और इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस से दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स को मंत्रमुग्ध करने वाले सुखविंदर सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुखविंदर जी, प्लीज कंटिन्यू टू स्पेल बाइंड अस विद योर सोलफुल मेलोडीज एंड टाइमलेस म्यूजिकल मैजिक। फिलहाल दोस्तों, उनकी एक फिल्म का है, उनका एक गाना है इनफैक्ट, वो किसना है, इस गाने को सुनते हैं जी हाँ, जिसमें सुखविंदर सिंह की आवाज सिर्फ एक गीत को नहीं बल्कि कृष्ण भक्ति के दिव्य एहसास को जीवित कर देती है। इस कॉम्पोजिशन में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वोकल रेंज, इम्पेकेबल ब्रेथ कंट्रोल और सुरों पर लाजवाब कमांड पर हर नोट को अलग रंग से रूहानी रंग देती है। तो चलिए सुनते हैं बिना दिल के इस ट्रैक को, वो किसना है। वैसे आपको एक और बात बता दें जी हाँ, कि एक ऐसा गाना है जिसमें सुखविंदर सिंह जो है ना वो गा भी रहे हैं और प्रियंका चोपड़ा पिक्चराइज है, वो है गल्ला गोड़ियां। जी हाँ, दिल धड़कने दे।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

सुखविंदर सिंह की बुलंद आवाज में जुनून भी है, इस ट्रैक में नजाकत भी है, शक्ति भी और भक्ति भी है ना। वैसे म्यूजिक की बात करें तो AR रहमान और इस्माइल दरबार ने मिलकर ऐसा साउंडस्केप क्रिएट किया है जो क्लासिकल भी है, सिनेमैटिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। आकाशवाणी रीन पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड थ्रिल्स, जहां मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। हर नई फिल्म के साथ वो अपनी एक्टिंग के नए डायमेंशन एक्सप्लोर करती है। वो कमर्शियल सिनेमा और कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग के बीच एक सीमलेस बैलेंस क्रिएट भी करती है। बॉलीवुड के सिनेमैटिक कैनवस पर उन्होंने अपने रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेज, एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस और डीपली इमर्सिव एक्टिंग से एक अलग ही पहचान बनाई है। भूमि पेंटकर है वो नाम जो अपनी अदाकारी से ऑडियंस को एंटेन करती आई है, और आज है इस टैलेंटेड एक्ट्रेस का हैप्पी हैप्पी बर्थडे। 18 जुलाई 1989 को मुंबई में पहली बार आंखें खोली भूमि ने। बचपन मुंबई के वाइब्रेंट और कल्चरली रिच माहौल में गुजरा, जहां उनके अंदर क्रिएटिविटी और परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति लगाव धीरे धीरे शेप लेता गया। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने 6 साल तक एक रिनॉन प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस लर्निंग फेज में उन्होंने सिनेमा की क्राफ्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग की गहरी समझ ली, जो बाद में उनकी परफॉर्मेंसेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। भूमि ने 2015 में दम लगा के हईशा फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उनका डेब्यू किसी ग्लैमरस हीरोइन के रूप में नहीं बल्कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर के साथ हुआ। इस फिल्म में संध्या के किरदार में उन्होंने अपनी इमोशनल सिंसेरिटी, एफर्टलेस रियलिज्म, स्टोर स्टरिंग परफॉर्मेंस से हर फ्रेम को इमोशंस की गहराई और कैरेक्टर की इनर स्ट्रेंथ को खूबसूरती से उभारा। इस फिल्म में उन्हें उनके एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया। टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान, सोनचरिया, बाला भीड़, भक्षक, बधाई दो जैसे कई फिल्मों के जरिए भूमि ने हर जॉनर में अपनी वर्सटैलिटी का एक नया आयाम पेश किया। सोशल ड्रामा से लेकर इंटेंस थ्रिलर्स और मेन स्ट्रीम कमर्शियल एंटरटेनर्स तक उन्होंने हर नैरेटिव में अपनी एक्टिंग के नए शेड्स एक्सप्लोर किए। वी विश भूमि अ वेरी हैप्पी बर्थडे, कीप एंटरटेनिंग अस भूमि विद योर परफेक्ट परफॉर्मेंसेस। फिलहाल अब हम जो ट्रैक सुनेंगे वो उनकी डेब्यू फिल्म का है, जी हाँ, मोह मोह के धागे। और वैसे भी जो ट्रैक है ना दोस्तों, ये सिर्फ एक रोमांटिक मेलोडी नहीं है बल्कि दम लगा के हईशा में भूमि की ब्यूटिफुल

रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस का एहसास भी है। सिक्स 8 1 0 7 0 7 0 पर भेजिए वो आप हमें बॉलीवुड सरदार से जुड़ा जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब, जी हाँ, कि वो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें प्रियंका चोपड़ा डांस कर रही है और जो पीछे जो बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनमें एक कैरेक्टर की आवाज है सुखविंदर सिंह। तो आपको बताना, मैंने इस बारे में आपसे अभी थोड़ी सी बातें भी की हैं, तो आप बताइएगा हमें कि वो ऐसा कौन सा गाना है, कौन सी फिल्म का बता दीजिए वरना, कौन सी फिल्म का गाना है या कौन सा गाना, कोई भी बता दोगे तो चलेगा, कि जिसे प्रियंका चोपड़ा डांस कर रही है और एक मेल की जो आवाज है, जो मेल कैरेक्टर है उसमें एक जो आवाज है वो सुखविंदर सिंह की है।

वेल गाइस, ये जो आप डांसिंग ट्रैक सुन रहे हैं ये है फिल्म दिल धड़कने दो का। और इस ये जो ट्रैक है, ये जो एनर्जेटिक सेलिब्रेशन सॉन्ग जो है, इससे प्रियंका चोपड़ा की वाइब्रेंट डांसिंग स्किल्स और सुखविंदर सिंह की इलेक्ट्रिफाइंग सिंगिंग स्टाइल का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रियंका के एफर्टलेस डांस मूव, एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज और इन्फेक्शियस एनर्जी ने हर फ्रेम को अलाइव कर दिया, लगता है ना। और सुखविंदर की आवाज, वो तो इस गाने की जान है, हार्ट बीट है। जी हाँ, और आज है इन दोनों का हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेनबो पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में। और मैंने पूछा है कि आपसे 9868107070 पर कि वो ऐसा कौन सा ट्रैक है जिसे प्रियंका चोपड़ा जो है वो अपनी डांस मूव से इंटेन कर रही है और सुखविंदर सिंह अपने सिंगिंग से हमें इंटेन कर रहे हैं। तो हमें जो फर्स्ट मैसेज आया हुआ है प्रवीण चौहान का खारगोन मध्य प्रदेश से, जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब लिखा है और 11:30 एग्जैक्ट, क्या बात है। आपके लगता है मोबाइल के साथ बिल्कुल साथ में ही थे। और इसी के साथ जी हाँ, हमारे मैसेजेस लगता है फिर से कहीं चले गए आज दोस्तों। मैं आपको ऑनलाइन नहीं ले पा रही हूँ, बहुत बहुत इसके लिए हम सॉरी फील कर रहे हैं सीरियसली, लेकिन क्या करें, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है ना। और आप तो जानते ही हैं, जी हाँ, जब इंसान थक जाता है तो मशीनें क्या हैं, वो तो इंसान की बनाई हुई है, कठपुतली है हमारी, तो वो भी हमारी खराब हो जाती है कई बार। तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके साथ हैं इस समय बिल्कुल लाइव। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, बड़ा प्यारा मैसेज है, राम राम जी, राम राम जी। देखिए फिर से हमारा मैसेजेस जो है वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो हैं आपके साथ। हेलो नमस्ते इंडिया, जय जगन्नाथ जी। प्रियंका जी, हमारी छोटी लाडली आए हो, देश सेवा और धार्मिक ज्ञान की चर्चा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़े सही है जी आप, रोहित खेरा दिल्ली से आप मैसेज कर रहे हैं। दिल दिल कहे देश सेवा कीजिए, दिल से सदा प्रभु का नाम लीजिए, जितना हो सके सबको प्यार दीजिए, विचार सदा शुद्ध और आध्यात्मिक रखिए। ऐसे विचार मन में लाने के लिए हमें आपकी जरूरत है। माह में लगभग एक बार आप आती हैं, इंतजार में पलके थक जाती हैं, इसलिए आते रहेगा, मिलते रहेगा, मधुर गीत के साथ ज्ञान बांटती रहेगा। नमन है आपके पूजनीय माता पिता को। थैंक यू सो मच रोहित जी, बहुत बहुत प्यारा मैसेज है, दिल को छू गया ये मैसेज। लेकिन फिलहाल हम ये कहेंगे कि मैं आई थी लेकिन प्रोग्राम हमारा दूसरा था, सेटेलाइट था। जी हाँ, और इसी के साथ हमें मैसेज आया है सलीम मलिक का, गलत जवाब है। बहुत सारे दोस्तों ने गलत जवाब दिया है, क्या बात है। क्यों, डॉली ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, हरीश गौर ने हमें मेरठ से बिल्कुल सही जवाब दिया है, और इसी के साथ रवि जोशी जी ने भी गलत जवाब दिया है, फुरकान जी ने, क्या बात है, लगातार 3-4 मैसेज किए 11:37 पे, उनके भी 5 मैसेज हैं बिल्कुल सही है। और इसी के साथ हमें ओके रॉबर्ट का मैसेज आया है, लेकिन इन्होंने भी गलत जवाब लिखा है। और इसी के साथ हम कहेंगे दोस्त, आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ी रही है।

और फिलहाल एक ट्रैक आपका वेट कर रहा है। जी हाँ, ये जो ट्रैक है ना, ये धुरंधर का, आई एम टेलिंग यू गाइस, इस ट्रैक में जो सबसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन है वो पता क्या है? पहले सुनिए, फिर आती हूँ आपसे बात करने के लिए कि इस ट्रैक का मुझे जो यूएसपी है वो क्या लगता है। मैं हूँ प्रियंका वर्मा, आपके साथ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में।

इस ट्रैक में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं ना, और इस ट्रैक का रियल मैजिक है इनके वोकल्स. जी हाँ, जैस्मीन और सतिंदर की जो अलग अलग टेक्सचर्स के साथ अपने खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट करते हैं. इन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल हैं, चाहे गाना एहसास से दूसरे एहसास से स्मूथली ग्लाइंड करता है. आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ. नेक्स्ट प्रोग्राम प्ले इट कूल, रेडी रहिएगा अदिति के साथ. फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ठीक 1 बजे आऊंगी मेरा वाला सॉन्ग लेकर. जी हाँ, जो गाने वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, उसके बारे में जानेंगे. आप 9868107070 पे भेजेंगे. 2000 ईयर के बाद के गाने हो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, ज्यादा डांट नहीं लगाना अगर पुराने गाने भेजो तो, और मैं नहीं लगाऊं तो. जी हाँ, पहले ही बता देती हूँ मैं. चलिए इसी के साथ ठीक है, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड.

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਟ੍ਰੇਲਸ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਟ੍ਰੇਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 12:01 ਦਾ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 12:05 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अब से कुछ देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया।

गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिन उदास रहते हो।

जी इसे ही तरह दे तुहाडे भेजे हुए प्यारे प्यारे शेयर ते कवितावां ते आधारित सिलसिला पैगाम जिसका आनंद तुसी मानोगे कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे दौरान वाचक होंगे विजय लक्ष्मी सो सुनना ना भूलना कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान सिलसिला पैगाम।

0: कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: पारित दे वीडियो डन समर्पित एक शाम जी श्रोत्यो, श्री बलजीत शर्मा प्रोग्राम राखी सरहदां दे तहत लेके आ रहे ने आजाद भारत दे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दी अमर गाथा। मिति 19 जुलाई, दिन एतवार शाम 5:30 बजे।

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, किसी कारण करके लगता है फोन कट हो गया। साडे नाल जुड़े सीगे फोन कॉल ते अजैब सिंह जी, जिन्हां ने फरमाइश की सी हंस राज हंस दे गीत दी। तो सुनते हाँ उन्हें दी फरमाइश दा ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, सत
0: हाँ जी, सत
1: श्रीकाल
0: श्रीकाल
1: जी।
0: जी, स्वागत है जी साडे प्रोग्राम च। थोड़ा कौन ते कितों
1: मैं
0: बोल रही हो
1: जोगिंदर टेलर बोल रहा पिंड चौके तो जी।
0: जी? जोगिंदर जी, केड़ा गीत सुनोगे फिर अज?
1: आज सुनना जी मैं अनमोल विरक का गीत, कोई मर्जी सुना जी।
0: अनमोल विरक दा गीत, ठीक है जी? थोड़े रूबरू लेके आ रहे हाँ अनमोल विरक दा एक गीत, ते सुनो फिर।
1: ठीक है, धन्यवाद जी।

हेलो हेलो हेलो शायद उन्होंने फोन कट दिता है ते कोई गल नहीं। अपने कोल पेशकश आई सी बिट्टू सिंह जी दी जो कोट बख्तू तो सी ते उन्होंने अपने नू जिहड़ी फरमाइश कीती सीगी ओह सीगी गुरदास मान जी दी मोहम्मद सदीक ते रणजीत जी दी। ते आओ सुनदे हां मोहम्मद सदीक ते रणजीत दी आवाज विच।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो पैन जी, सत श्रीकाल।
0: सत श्री अकाल जी, किवें हो?
1: बहुत वधिया भैन मेरी, बहुत वधिया। बस इतो भैन भाई का गल हो जाए उदू भी वधिया हो जाते हैं
0: चलो जी,
1: हाल का।
0: साडे घर परिवार विच बहुत स्वागत है। ते
1: बहुत
0: इस
1: धन्यवाद,
0: प्रोग्राम दे
1: शुक्रिया
0: तहत
1: जी।
0: तुसी ये दसो हुण वी केड़ा गीत सुनोगे?
1: गीत सुनांगे शरेंद्र शिंदे जी, गीत सुनांगे थोड़ी मर्जी का, जेड़ा भी मर्जी सुना दे।
0: चलो ठीक है जी, असीं आपदी मर्जी दा सुना देंगे। ते ये दसो तुसी कौन बोल रहे हो ते कित्थों बोल रहे हो?
1: गल पिंड मोड़नाबाद, जिला बरनाला जी।
0: ठीक है बुटा सिंह जी, थोड़ी फरमाइश ते असीं सुरिंदर छिंदा जी दा ये गीत सुना रहे हैं, ते सुनो फिर।
1: धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, थैंक यू।

लाल पद आने वाला आ गया जदों दा छुट्टी, लाल पद आने वाला आ गया जदों दा छुट्टी, मोतिये दा फुल तू बनी, मोतिये दा फुल तू बनी, वे मैं जा मेरा रब जानदा।

मोदी ये दा फूल तू बनी वे मैं जा मेरा रब जान।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ विच लगभग 25,000 करोड़ रुपए तो वध दे विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन कीता ते नींह पत्थर रख्या। श्री मोदी ने जलंधर विच 5,470 करोड़ रुपए तो वध दी लागत वाले वख वख रेल अते सड़की बुनियादी ढांचे दे प्रोजैक्टां दा उद्घाटन कीता अते नींह पत्थर रख्या। श्री मोदी नाल आए केंद्रीय सूचना अते प्रसारण अते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस्सिया कि केंद्र सरकार पंजाब विच कई वड्डे रेलवे प्रोजैक्टां ते काम कर रही है।
1: पंजाब में अपार संभावना है साथियों। लुधियाना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जालंधर खेल उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है, मोहाली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का बड़ा हब बन सकता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंजाब के हर नागरिक तक अच्छी रेल सुविधाएं पहुँचाने के लिए और आप सबका जीवन आसान बनाने के लिए कमिटेड है।
0: अज पंजाब विच करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत 30 स्टेशनों मुड़ विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन

0: जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: पारित दे वीरयोधन समर्पित एक शाम जी श्रोत्यो, श्री बलजीत शर्मा प्रोग्राम राखे सरहदां दे तहत।

0: प्रोग्राम दे वाचक बलजीत शर्मा ते तुहाडी रेडियो दोस्त आकांक्षा अरोड़ा, संपादन सतपाल बराड़। तां फिर सुनना ना भुलना, मिति 19 जुलाई दिन ऐतवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहदां दे।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 18 जुलाई दिन शनिवार शाम 5:30 बजे तुसी सर्वण करोंगे प्रोग्राम हर अकाल उस्तत दे अंतर्गत सिलसिला अरदास दर्शन रूप अभ्यास।

बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना

बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिन उदास रहते हो। तू शाम

जी इसे ही तरह दे तुहाडे भेजे हुए प्यारे प्यारे शेर ते कवितावां ते आधारित सिलसिला पैगाम जिसका आनंद तुसी माणोगे कल सवेरे 7

0: प्रोग्राम चल रहा जी टेलीफोन मिलाओ जी, आकाशवाणी का FM बठिंडा केंद्र तुहाडी सेवा च 101.1 MHz ते। ते आओ अगले कॉलर नाल करिए गलबात।
1: हेलो
2: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ च। कौन बोल रहे हो, कितों बोल रहे हो?
2: नछत्र सिंह जी, पिंड कोट वस्तू तो।
0: नछत्र सिंह जी, केड़ी फिल्म दा केड़ा गीत जेड़ा हैगा तुहानू सुनाइए?
2: ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ
2: ਪੂਰਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।
0: ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ?

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि

0: प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की

0: समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और

0: में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुने तुसी सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। आकाशवाणी का यह बठिंडा केंद्र है 101.1 मेगाहर्ट्ज़ अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते। साडे स्टूडियो दी घड़ी मुताबक समा होया है जी 2:30 अते 21 सेकंड दा। हुण समा हो रहा है सुरीली दुपहर दा। आओ सुनदे हां हुण प्रोग्राम सुरीली दुपहर।

जी श्रोतियो, प्रोग्राम सुरीली दोपहर विच आप सब श्रोतियां दा स्वागत करते हाँ। मैं हाँ प्रोग्राम दी मेजबान सुमनप्रीत कौर। मेरे वल्लों सुरीली दोपहर सुन रहे सारे ही श्रोतियां नूं प्यार ते सत्कार भरी नमस्कार जी। श्रोतियो, हुण शामिल करते हाँ साडे प्रोग्राम सुरीली दोपहर दे विच खत। ते पहला खत जो सानू प्राप्त होया है जी, गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तों। लिखण वाले स्रोतां ने जी हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जय तेग विरक अते मीका बिरक। अगला खत सानू प्राप्त होया है जी सादुल शहर तो। ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश अते वेद प्रकाश चौहान। खत लिखण वाले स्रोता ने जी मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, निहारिका अते वंश बत्ता। यह लिख रहे ने जी खत कनेरा मोहला पटियाला तो। अगला खत मिलिया है जी सानू गिदड़वा पंजाब तो। लिखण वाले स्रोता ने जी मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल, हिनाशा, बेबी कैरवी। अगला खत है जी मखू फिरोजपुर तो। लिखण वाले ने जी बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी अते मनीष बजाज। अगला खत लिखा है जी पिंड कुड़ियाणा, जिला फाजिलका, पंजाब तो। लिखा है जी मलकीत सिंह कुड़ियाणा, मनजीत कौर बठिंडा, दीप इंदर सिंह, पोता गुरशबद सिंह, जीत सिंह कुड़ियाणा, दर्शन सिंह, समूह बराड परिवार अते उन्होंने दोस्त बलतेज सिंह, कुलवंत गिल मलोट। अगला खत है जी सानू मिलिया है महादेव घाट अमलेश्वर तो। लिखण वाले स्रोता ने जी डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर अते बाबू रियांश ठाकुर। अगला खत असी शामिल करन लगे हाँ जी, जो लिखा है शहर बागा पुराना तो। गगनदीप कौर, गुरप्रीत कौर, परमजीत कौर, पाल सिंह, परमजीत सिंह, बागा पुराना। अगला खत मिलिया है जी सानू पिंड कोट शमीर नेड़े कलाश का चौंतरा, जथेदार बाबा प्यारा सिंह, मेजर सिंह पंजू, प्रगट सिंह ढिल्लों, सुखदीप सिंह गिल अते गुरमेल सिंह। अगला खत शामिल करन लगे हाँ जी पिंड पक्खी खुरद फरीदकोट तो। लिखण वाले स्रोता ने जी सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन अते इन्हां दा सारा ही गिल परिवार। अगला खत सानू मिलिया है जी पिंड नथाणा, जिला बठिंडा तो। लिखण वाले स्रोता ने जी हरजिंदर शिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। खत लिखण लई इन्हां सारे ही स्रोतियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते आओ हुण इन्हां सारे ही स्रोतियां दी रली मिली फरमाइश ते सुन लैंदे हां सुरिंदर कौर अते प्रकाश कौर दीआं आवाज़ां दे विच इह गीत।

0: हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: पारित दे वीडियो दन समर्पित एक शाम जी श्रोतियों, श्री बलजीत शर्मा प्रोग्राम राखी सरहदां दे तहत लेके आ रहे ने आजाद भारत दे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दी अमर गाथा। मिति 19 जुलाई, दिन एतवार, शाम 5:30 बजे।

0: प्रोग्राम दे वाचक बलजीत शर्मा ते तुहाडी रेडियो दोस्त आकांक्षा अरोड़ा, संपादन सतपाल बराड़। तां फिर सुनना ना भुलना, मिति 19 जुलाई दिन ऐतवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम राखे सरहदां दे।
1: प्रोग्रामा संबंधी जानकारी आकाशवाणी बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्राम निके निके तारे तहत दिन ऐतवार मिति 19 जुलाई नू साडे

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान EMI राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी श्रोतियों, अगला खत प्रोग्राम दे विच शामिल करदे हां जी। मेन बाजार पिंड चौके जिला बठिंडा तो लिखण वाले ने जी बसंत सिंह, लवदीप सिंह, जसल जोगिंदर सिंह, अरपन सिंह, अजबेर सिंह अते रवि पुरबा। अगला खत सानू मिलिया है जी पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। अगला वट्सअप सुनेहा सानू भेजा है जी पिंड जीदा जिला बठिंडा

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मुझे ईद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहा। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्रीगंगानगर से निकीराम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मंच हीत कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से। जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दम्बा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितंबर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा, सितंबर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोटा रोडा को, लासी गजानन, कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है। मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ। मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ

0: अच्छा अच्छा जल्दी बता, वो आया कि नहीं?
1: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ, अब बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
0: नानी किसकी हूँ?
1: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुंच गया है।
0: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
1: ओ फोन नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
0: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
1: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
0: आज क्या मिल रहा है उसे? क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
1: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
0: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा, और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
1: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
0: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, है?
1: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है, उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
0: अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता, आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता? अरे
1: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
1: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग मैं खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय
0: ओके बाय बेटा,
2: आ जाओ सब लोग, आ गए सब लोग।
1: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी, और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है, मैं देख लूं खोल के।
2: हाँ, देखो देखो,
1: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी
1: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी, ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा।
2: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
1: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
1: ओह नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस।
3: हाँ।
4: ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियां निकालना आता है।
1: क्या पापा,
2: अरे आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए परांठा बना देती हूँ, आज बेटा।
4: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैंतरा है।
2: जी हाँ वो तो है।
4: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो आगे शुरू, बस करिए। हाँ नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना,
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले रही थी।
3: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ये गुड़िया, तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
1: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
1: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे, लेकिन
1: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे।

0: तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
1: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
0: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
1: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना।
0: हाँ।

0: करना अलाउड नहीं है तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
1: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है
2: अम्मा,
1: रे?
2: अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
1: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
1: हाँ
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
1: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
1: अच्छा
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ, रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
1: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं आ
3: गुड़िया
1: रहा है।
3: याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता। खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए
2: हाँ,
3: थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
3: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
0: ओ मम्मा, भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
1: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रही है, आप जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है, इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती। बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले अम्मा।
1: बहू हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
2: हाँ तो अम्मा हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
2: पर उस दिन, हाँ माँ उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
3: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी हाँ, तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
2: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
3: हाँ।
2: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
3: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
1: क्या, घर लाने का?
3: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
2: हाँ हाँ, हाँ
3: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
0: पापा पापा पापा।
3: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
0: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
3: अरे क्या है बताओ
0: पापा,
3: तो
0: पापा देखिए ना वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
3: हाँ भूखा और परेशान है लगता, कहीं से भटक के आ गया।
0: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
3: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
0: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
3: इस समय लॉकडाउन में
0: प्लीज पापा।
3: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
0: अरे पापा
2: ठीक कह रहे हैं,
0: कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
3: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो।
2: हाँ।
3: अच्छा काम करते हैं, अब मैं चला

0: जाता हूँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
1: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
0: हाँ
1: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है। ये देखिए पानी है ना और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क, मास्क कहाँ है आपका?
0: अरे हाँ लगा लिया है।
1: और सैनिटाइजर रखिए भाई।
0: अरे रखा है भाई।
2: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
1: भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
0: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
1: कमाल है आप तो।
0: तुम डरोगी तो नहीं ना?
2: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
0: हाँ तो चल चल चल,
1: मतलब डरोगी नहीं, ये क्या है
2: मम्मा प्लीज।
0: चलो चलो चलो, लो लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
2: हाँ हाँ पापा आइए।
3: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
1: ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना।
3: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
1: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
2: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
1: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए।
2: इतनी रात को लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
1: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
2: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
1: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हाँ हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
2: हेलो हाँ मम्मा।
1: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं?
2: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
1: क्यों भला?
2: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
1: हवा?
2: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
1: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
2: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखे जाएंगे, आप बस वेट करिए।
1: अच्छा
4: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
1: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
4: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
1: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
4: आजादी मिलने का नहीं, हाँ? जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे। पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
1: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
4: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
1: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
4: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो, इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
1: अरे अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
4: हाँ।
1: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे, है ना?
4: हाँ हाँ देख देख,
1: ठीक है
4: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
1: गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
4: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा। हाँ

0: माँ ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
1: हाँ हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो, हम लोग जो कटोरा लाए थे ना, मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
2: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: हाँ, अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
2: अरे डर रहा होगा ना शायद।
1: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है ये।
0: हाँ पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम। तुम लोग आसमान में टंगे हो।
1: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
2: हाँ, बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों। 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको, जमीन आसमान का मतलब यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं। जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
0: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूँ जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
0: अरे क्या ऐसा बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
0: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
1: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हाँ? सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे साइकिल रिक्शा पे किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। Rather they were running, you know, running away from cities of their employment, mama, to their native places. Mama, they were escaping, migrating.
0: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
1: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
0: अच्छा
1: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
0: अच्छा
1: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वर्ड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
0: अच्छा
1: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
0: क्या,
1: यू नो पापा ने क्या किया?
0: क्या
1: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
0: अच्छा
1: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
0: हैं? हाँ हाँ हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं कोई बात।
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
3: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ?
0: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
3: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा, जिंदा बचा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ ना सरकार, ना अमीर ना गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा।

0: अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
0: यही तो विडंबना है। ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
2: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है और वो भी जागते हुए।
0: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है। काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
2: क्या?
0: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
3: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
4: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
0: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
4: हाँ हाँ
3: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
4: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
3: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
4: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
3: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
4: हाँ,
3: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है, ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
4: हाँ।
3: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
5: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई,
0: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी?
5: बिल्कुल।
0: उनको दिखाने बैठ गई, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
5: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
5: है। बस बस बस, शुरू हो गया ये। इनको मौका मिला गुड़िया, और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
3: क्या मम्मी पापा, आप भी ना? अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना? हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक, और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
6: गुड़िया,
3: अरे आप जाग रही हैं?
6: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
3: इज इट? क्या बात है,
6: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
3: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का, और भूरे की मस्ती।

0: शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह, मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
1: हाँ बेटा, जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से, इत्मीनान से। मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके, गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना उसे?
0: हाँ,
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
0: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और थे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी, निर्देशक अमरकांत दुबे और प्रस्तुतकर्ता

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए।

0: Silence, lights, sound, camera, action.
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
3: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
2: जी,
3: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती है तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
2: जी,
3: तो वहां आना ही था।

0: मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है। फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने
1: को
0: दोनों
1: मिलाया है।
0: मिलाया है, और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे, और काफी ये इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को।
1: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों
0: जी
1: की, और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रहे ये फिल्में बनाने के?
0: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी,
1: जी
0: उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी,
1: जी
0: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना
1: नहीं,
0: चाहता है, और
1: हाँ
0: जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है,
1: हाँ
0: इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में
1: जी
0: जाना चाहता है ये, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं,
1: सबसे बड़ा
0: सबसे
1: संदेश।
0: बड़ा। जी
1: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था।
0: जी
1: तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
0: अब तो ओटीटी आ गया है, और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म एनएफडीसी की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था, लेकिन अब जब ओटीटी पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
1: जन जन तक
0: जन
1: पहुंची
0: जन
1: है।
0: तक पहुंची है ओटीटी की मेहरबानी से।
1: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे, और
0: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है,
1: जी
0: करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं
1: एक मार्केटिंग बहुत जरूरी
0: मार्केटिंग
1: है
0: के
1: आप
0: लिए।
1: तक
0: जी
1: पहुंचने के
0: जी
1: लिए। तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है, तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
0: मुझे अलग अलग तरह का मूड के हिसाब से मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो, और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए, और फिर आपके मूड पे भी है। कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना। बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं वैसे शॉट ले रहे
1: और
0: हैं,
1: कोई
0: लेकिन
1: लाउड सिनेमा नहीं रहा
0: बिल्कुल
1: है
0: नहीं
1: इनका।
0: है,
1: नहीं,

0: और आप और हमारे इर्द गिर्द
1: कहानियां
0: की
1: खाने वाली।
0: कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं, वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर बात
0: जरूर।
1: को आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही
0: जी।
1: सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा। तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
0: जी, तो कहाँ तक पहुंचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं है कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
0: जी
1: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
0: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर

0: आज की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: जी, दोनों
0: है,
1: के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: वहां
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी,
0: अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूँ। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूँ मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब, तो पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी हिसाब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है ये, तो पूरी साहब करेंगे? पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का एड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हों या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी

0: बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है,
1: जी
0: आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: बिल्कुल
0: तो पूरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती है।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि
0: बिल्कुल
1: वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत है
2: जाने वालों।

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज सहानी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआती, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिका है आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला।
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए घातक।
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनकी
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका,
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
1: निर्देशक
0: है
1: आप... कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
1: बहुत अच्छी,
0: बहुत ही संचिता कलाकार है
1: जी।

0: और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका, और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम, बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है। तो वो ख्याल रखना, वो
1: बहुत
0: निर्देशक का
1: जरूरी
0: भी
1: है।
0: जरूरी है, कलाकार

0: बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना, वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे, उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
1: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
0: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं।
1: बहुत सुंदर गाना है, चलिए तो सुनते हैं यही गीत।
0: जी।
2: सपनों

0: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माताजी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था। आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे,
1: जी
0: उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
1: जी
0: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको। फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
1: जी
0: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी, मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव, अच्छे बुरे खट्टे मीठे, थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी वहां पे, स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो।
1: जी
0: तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं वो, उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष, के इतने अमीर माता पिता के संतान होके आज देखिए, जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई,
1: जी
0: भुखमरी आ गई, है
1: जी
0: ना,
1: बिल्कुल
0: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
1: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक
0: जी
1: किताब रही ये
0: जी
1: यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हमने
0: साहित्य
1: आपको
0: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
1: में
0: बुक में लिया।
1: शामिल किया,
0: जी
1: और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी, आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी
0: गुजरी
1: है अब
0: अब
1: तलक।
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पूरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड,

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं जी। एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूं, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूं तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक

0: जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है,
1: जी
0: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे, पहली बात, जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं, तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे,
1: हाँ, मतलब
0: नहीं।
1: सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
0: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होके आप आते हैं, तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती है, थिएटर किया होता है, और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जैसे एक डॉक्टर बिना एमबीबीएस किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद
0: जी
1: को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी, आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
1: जी, तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस
0: जी
1: कार्यक्रम का।
0: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, एलपी का म्यूजिक है, न जा अब कहीं न जा,
1: दिल के सिवा
0: दिल के सिवा।
1: क्या

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: पर है टू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हुणे तुसी विविध भारती दे प्रोग्राम सुन रहे सी। एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है शाम दे 5:30। पेश है किसान वीरां ते किसान बीबियां दा प्रोग्राम किसान वाणी। अज इस प्रोग्राम दा संचालन करनगे कुलदीप कौर।

कि एक राजे दी राणी बड़ी चंचल सुभा वाली सी। राजे दे वजीर नाल उस दे संबंध सन। एक वेरा राजा शिकार ते गया होया सी ते राणी राज महल विच वजीर नाल रंग रलियां मना रही सी। राजे नू बाहर गया जान के दोवे उथे ही सौ गए, पर राजा समय तो पहला ही परत आया। महल विच पुजा ता उन्हां दोनां नू अपनी सेजा ते सुत्यां वेख्या। राणी दे ढिलके बस्तर एक वार्ता कह रहे सन। राजे ने अपनी चादर लाही छोपले जे उन्हां दोनां उपर पा दित्ती ते आप उथों चलिया गया। तड़के

खेमा गहो सतगुर सरनाई। दोस्तों ये शब्द मारू महला पहला दे विच दर्ज है। खेमा प्यार दा उच्चतम प्रगटावा है। इस दी बरकत नाल ही टुट्टी गंढी जांदी है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब एक वेरा सिखा नू उपदेश कर रहे सन। जद गल खेमा दी चल पई तां सतगुरा फरमाया, करनी क्षमा महा तप जान, क्षमा करण ही दैबो दान, क्षमा सकल तीरथ इशनान, क्षमा करत नर की कल्याण, क्षमा सम्मान आन गुण नाही, याते क्षमा धरो मन माही। दोस्तों ये जानकारी गुर प्रताप सूरज रास 11वां दे विच दर्ज है। साध संगत जी, खेमा वड्डा तप है। जिथे खेमा वरते उथे वाहिगुरु जी आप वरतदे ने। कई बार शंका उठाया जांदा है कि खेमा करना न्याय दे विरुद्ध है। साध संगत जी, खेमा करना अन्याय नहीं हुंदा। इस नाल तां दैवी न्याय दी अमलदारी कबूली जांदी है। खेमा करना संपूर्ण अवस्था नूं

0: हर संस्था एक जनतक थानू गोद लैके हर महीने कुछ घंटे उसकी सफाई ते संभाल लई समर्पित करे तो असि एक साफ ते सेहतमंद पंजाब की सिरजना कर सकते हाँ। पिछले कई दिनों तो गर्मी और उमस भरे मौसम तो बाद मौसम विभाग ने बल्कि 19 जुलाई तो 23 जुलाई तक मौसम के खुशगवार होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तो 22 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी तो बेहद भारी मीह पैण संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस तो इलावा भलके 19 जुलाई लिए भी दोवे राज केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में दरमियाने तो भारी मीह पैण संबंधी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अच कई थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश के नाल नाल लोगों नूं गर्मी ते उमस का सामना करना पै रहा है। मौसम विभाग ने अच पंजाब के बठिंडा में सब तो वध तापमान 41.1 डिग्री सैलसीयस से हरियाणा के सिरसा में वध तो वध तापमान 40.4 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया। चंडीगढ़ में वध तो वध तापमान 37.7 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। खेडां विच भारतीय बैडमिंटन खिडारन पीवी सिंधु टोक्यो विच जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट दे औरतां दे सिंगल्स दे फाइनल विच पहुंच गई है। हुण फाइनल विच भलके पीवी सिंधु दा मुकाबला जापान दी अकाने यामागुची नाल होएगा। आखर च खास खबरां। केंद्रीय राज मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनरां दीआं शिकायतां दा निपटारा करन दे नाल नाल पेंशनरां दीआं इच्छावां अते चिंतावां नूं दूर करन ते ध्यान केंद्रित करना चाहीदा है। भारत के चीफ जस्टिस शशि सूर्यकांत ने अज चौगिरदा सुरक्षा ते निरंतर रहण योग विकास नूं उत्साहित करन लई पंजाब हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच रुख लाउण दी मुहिम दी शुरुआत कीती। पंजाब भर विच वख-वख थावां ते लोक अदालतां लाईआं गईआं ते मौसम विभाग ने 20 जुलाई तो 22 जुलाई तक पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी तो बेहद भारी मीह पैण संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ 6:30 ਤੇ 29 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮਨਦੀਪ ਰਾਜੋਰਾ।

0: स्कॉलरशिप स्कीम्स वधेरे जानकारी लई SST गर्ल्स कॉलेज अमरीक सिंह रोड बठिंडा विखे विजिट करो। कॉन्टैक्ट नंबर 94171-59121, 94175-57848 अते 98720-65150।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोग बने ने 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के हकदार। हुण तक 12 करोड़ तो ज्यादा मुफ्त इलाज किए जा चुके ने, जिस नाल गरीब परिवारों के इलाज खर्च विच लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके आयुष्मान कार्ड बनवाओ। वधेरे जानकारी लई 14555 ते कॉल करो।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
3: प्रोग्रामा संबंधी जानकारी आकाशवाणी बठिंडा वालों प्रसारित किए जाते प्रोग्राम निक्के निक्के तारे तहत दिन एतवार मिति 19 जुलाई नू साडे मेहमान होणगे सरकारी मिडल स्कूल लहरा खाना दे विद्यार्थी। प्रोग्राम दे मेजबान नितेश कुमार, सो सुनना जरूर। प्रोग्राम निक्के निक्के तारे मिति 19 जुलाई दिन एतवार सवेरे 10 बजे। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।
1: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लैन वालेयां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
1: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
4: ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
5: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
5: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
4: ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ
5: ਜੀ,
4: ਪਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
5: ਬਿਲਕੁਲ,
4: ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ।
5: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ,
4: ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ, ਗਿਆਨ
5: ਜੀ
4: ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
5: ਜੀ।
4: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
5: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी
1: आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सहदेवा प्रोग्राम श्याम सुहानी लैके तुहाड़ी सेवा विच हाजिर है। श्रोतियो, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल के लिए। जी हां दोस्तों, जेकर असी कल्ले ख्वाब वेखते रहिए ते कोशिश ना करिए तो कोई भी मंजिल तुहाडे कोल नहीं आऊगी, पर जब सच्चे दिल नाल मेहनत नाल ईमानदारी नाल तुसी कोई कोशिश करोगे तो जिंदगी दी हर मंजिल तुसी फतेह करोगे, क्योंकि साडियां शुभकामनावां साडियां मंगल कामनावां साडे श्रोतियां दे नाल ने। श्रोते, तुसी इस बारे की सोचते हो, अपने दिल दीआं गल्लां जां फिर तुसी अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनना होवे तां हुणे डायल करो 0164-2240-331। तां लो जी, साडे श्रोता तां बड़े सूझवान ने ते फोन दी घंटी वज रही है, वेखदे हां किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो, नमस्कार, कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने? विक्रमजीत सिंह जी, प्रोग्राम श्याम सुहानी आप जी का स्वागत है।
2: थैंक यू सर।
1: की हाल चाल ने?
2: हाल चाल बहुत बढ़िया जी।
1: मौसम कैसा है चनारथल दे विच?
2: मौसम तां जी गर्म है जी, पूरे
1: गर्म है। मेनू लगता किते ना किते साडियां कुताहियां साडियां गुस्ताखियां साडियां गलतियां दा नतीजा ही है ना, क्योंकि असी दरख्त कटदे जा रहे हां ते लगा नहीं रहे।
2: हां जी, दरख्त कले सड़कां ते रह गए, वणां च तां है नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सड़कां ते रह गए, असी अपने जेहड़े आले दुआले ने सारे दरख्त खत्म करते है ना।
2: हां जी हां जी हां जी हां जी,
1: ते बेचारे ओ बेजुबान पंछी परिंदे किथे जाण है ना। अपनी फरमाइश दसो विक्रम जी। जी
2: हां जी, गिल हरदी दा गाना जी बापू,
1: बड़ी सोहनी गीत दी फरमाइश कीती विक्रम जी, फोन करन लई बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सर।
1: पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतो, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सचदेवा दे नाल। वेखदे हां किसने डायल कीता है 0164-2240-331। हेलो,
3: हां जी लवली सचदेवा जी, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार। कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
3: मैं मलकीत सिंह कुड़ियाणा जी, आ रही है नवी बस्ती बठिंडे
2: दा। हां हां, मलकीत सिंह कुड़ियाणा जी साडे बहुत पुराने श्रोता ने।
3: हां जी,
2: ते
3: आशीर्वाद
2: ना सत्कार ना नवाज दे रहा करो जनाब। गाना दसो केड़ा सुनना?
3: मैं जगमोहन कौर ते केदीप दा सुनना जी, बापू दे अड हन्नी है जी।
2: फोन करने लई शुक्रिया, तुहाडे रेडियो सेट ते आ रहा जगमोहन कौर,
3: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद,
3: सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है जी शाम दे 7:10-55। तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा, वेखदे हां केड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो
3: हैलो सत श्री अकाल, नमस्कार
2: नमस्कार। बड़ी प्यारी जी मिठी जी आवाज है, मैं ना जान सकदा।
3: हां जी मैं भी परम सिंह पिंड रायखाना तो बोल रहे हां।
2: परम सिंह जी रायखाना तो बोल रहे हो, प्रोग्राम शाम सुहानी च आप जी दा स्वागत है।
3: क्योंकि
2: किणमिण किणमिण शुरू होवे फिर आपां आनंद माणिए है ना।
3: हां जी
2: फिर खीर पूड़े बनाओगे जदों आऊगी बारिश।
3: हां जी बनावांगे जी, खवावांगे तुहानूं वी।
2: चलो हां साडा जरूर ध्यान रखियो महाराज, असी इत्थे बैठे रहने हां। फरमाइश दसो अपनी जी।
3: फरमाइश
2: फोन कर ली, शुक्रिया जनाब। पेश है तुहाडी फरमाइश ते मिस पूजा दी आवाज विच ए गीत।
4: साडे सामने पेश कर जा रहे हां मिस पूजा दा नवा गीत। साडे यूके दे बहुत

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोते, फोन की घंटी बज रही है, वेखते हैं किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। प्रोग्राम शाम सुहानी विच आप जी का स्वागत है, ना ते ग्रां दसो।
3: धन्यवाद जी, मैं मेजर सिंह बोल रहा हूं पिंड बलाड़ विंग तो।
2: मेजर सिंह जी, तुहाडी आवाज तो साडे सारे श्रोता पछाण दे ने।
3: हां जी हां,
2: की हाल चाल है?
3: ठीक है जी, बहुत वधिया। आदे सुनाओ।
2: मेहर वाहे गुरु दी, फरमाइश दसो। बड़े प्यारे गीत दी फरमाइश कीती है, सच्ची गल है?
3: सच्ची है जी।
2: चलो जे कहो तो मना लैने, असी मिन्नत कर लैने। मेजर सिंह जी फोन करने लई शुक्रिया, तुहाडे नाल गल्लां करके वधिया लग्गिया। पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: मथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, आकाशवाणी FM बठिंडा दे अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारस दे विच इस वार यानी के मिति 19 जुलाई नू मेहमान होंगे उगी कवित्री ते कहानीकारा दिलप्रीत गुरी। एहे इना दे नाल मुलाकात दा दूजा भाग होवेगा, सो सुनना जरूर प्रोग्राम सुखन दे वारिस, मिति 19 जुलाई, दिन एतवार, सवेरे ठीक 10:30 बजे। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।
3: जी हां श्रोतो, फोन दी घंटी वज रही है, वेखदे हां केड़े श्रोता लाइन ते ने। हेलो।
4: हेलो जी, सत श्री अकाल जी।
3: नमस्कार, सत श्री अकाल। कौन जनाब बोल रहे ने, केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
4: मैं जोरा सिंह बोल रहा हूं, पिंड भागी बंदरों।
3: वाह जी वाह, जोरा सिंह जी की हाल चाल ने?
4: बढ़िया जी बढ़िया, रोटी खा के हुण दा थोड़ा प्रोग्राम सुन रहे जी।
3: आहा, आनंद आ गया फिर तो, रोटी खान दा भी आनंद आ गया है ना जी।
4: हां हां जी, रोटी दा हुण खा के दा जी बस।
3: आज फिर कादी दाल धरी सी?
4: अज गाजरा जी।
3: अज गाजरा धरिया सी? अच्छा अच्छा, हां
4: गाजरा सब्जी जी।
3: वाह जी वाह, वधिया लगिया? अपनी फरमाई दसो जोरा सिंह जी।
4: फरमाई
3: जी, फोन करने लई शुक्रिया जोरा सिंह जी। पेश है तुहाडी फरमाइश ते एक गीत।

दिन विखे शुरू होएगा। आखिर विच इस बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। भारत दे पहले निजी तौर ते विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम पन नु श्रीहरिकोटा दे सतीश धवन स्पेस सेंटर तो सफलता नाल लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कायरूट एरोस्पेस टीम नु लॉन्च लई बधाई दित्ती अते इस नु भारत दी पुलाड़ यात्रा विच एक अहम पल कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी विच

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वाले दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: प्रोग्राम प्रसारण संबंधी एक सूचना, आकाशवाणी FM बठिंडा दे अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारस दे विच इस वार यानी के मिति 19 जुलाई नू मेहमान होंगे उग्गी कवित्री ते कहानीकारा दिलप्रीत गुरी। एहे इना दे नाल मुलाकात दा दूजा भाग होवेगा, सो सुनना जरूर प्रोग्राम सुखन दे वारिस, मिति 19 जुलाई, दिन एतवार, सवेरे ठीक 10:30 बजे। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा।
3: बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिन उदास रहते हो।

0: जी इसे ही तरह दे तुहाडे भेजे हुए प्यारे प्यारे शेयर ते कवितावां ते आधारित सिलसिला पैगाम जिसका आनंद तुसी मानोगे कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी स्वेर दे दौरान। वाचक होंगे विजय लक्ष्मी। सो सुनना ना भूलना कल सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी स्वेर दौरान सिलसिला पैगाम।
1: जी हाँ श्रोते फोन की घंटी बज रही है, वेखते हैं किहड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो
2: हैलो
1: सत श्री अकाल नमस्कार।
2: सत श्री अकाल जी अपना सचदेव साहब
1: की हाल चाल ने जनाब, अपना नाम ते ग्रां दसो।
2: ज्ञान सिंह ढिल्लो पिंड ढड्डे जिला बठिंडा जी।
1: ज्ञान सिंह ढिल्लो जी प्रोग्राम शाम सुहानी च आप जी का स्वागत है।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
1: ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ?
2: ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਵਧੀਆ।
1: ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੱਸੋ।
2: ਆਪਣਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਮੜੀ
1: ਜੀ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: जी हाँ श्रोतियों, तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम शाम सुहानी दा अपने रेडियो दोस्त लवलीन सहदेवा दे नाल। वेखदे हां केड़े श्रोता इंतजार कर रहे ने। हैलो
3: जी, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल, नमस्कार
3: सारी टीम ने जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जनाब। अपना नाम ते ग्रां दसो।
3: गुरजंत सिंह जी, करमगढ़ उत्तों वाली जिला मानसा जी।
2: गुरजंत सिंह जी, प्रोग्राम शाम सुहानी विच आप जी दा स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
2: की हाल चाल ने?
3: ਵਧੀਆ ਜੀ।
2: ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ?
3: ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ।
2: ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਛੱਡਤੀ?
3: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ।
2: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
3: ਹਾਂਜੀ।
2: ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ?
3: ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ।
2: ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ
2: ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ। ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਾਬ।
3: ਦਿਲਦਾਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੀ।
2: ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले साडे स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक समा हो रहा है रात दे 8:25। पेश है प्रोग्राम रंगे गजल।

आवाज दी दुनिया दे दोस्तों नमस्कार। तुहाड़ा दोस्त लवलीन सचदेवा प्रोग्राम रंगे गजल लैके तुहाड़ी सेवा विच हाजिर है। अपना घर छोड़ मैं किराए का मकान ले लूं, अपना घर छोड़ मैं किराए का मकान ले लूं, गली के गवाहों से आज उसका हिसाब ले लूं। किया है अकेला मुझे इस नाजुक मोड़ पर, सोचता हूं उसे देख आज आखिरी सांस ले लूं, सोचता हूं उसे देख आज आखिरी सांस ले लूं। पेश है प्रोग्राम दी पहली पेशकश चंदन दास की आवाज विच गजल, शायर ने डॉक्टर बशीर बदर।

बहुत दूर मगर बहुत पास रहते हो, आँखों से दूर मगर दिल के पास रहते हो। मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे बिन उदास रहते हो।

उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है। फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं, बगल में खंजर भी देखा है। पेश है प्रोग्राम दी अगली पेशकश, मेहंदी हसन दी आवाज़ विच गज़ल, शायर ने मशरूर अनवर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

0: मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
2: इट्स ए वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंता बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर

उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था स्वर्ग नर्क।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में आप सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ी। फिल्म का नाम शरीफ बदमाश।

किशोर कुमार और आशा भोंसले को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था शरीफ बदमाश। और आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज फिल्म ब्लैकमेल के लिए, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यकीन का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत शंकर जयकिशन का है।

मोहम्मद रफी के गाए फिल्म यकीन के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे

दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनके गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया। यानी ये तय है कि आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी प्रतिभा की बातें हो रही हैं जो एक बेहतरीन गायक थे, लेकिन उसके साथ साथ थे एक बेमिसाल गिटार वादक, और उनके गिटार से सजे हैं फिल्मी दुनिया के कुछ बेमिसाल गाने। ये शायद पहली बार हो रहा है कि आज के फनकार कार्यक्रम में हम इस गायक की गायकी की प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपेंद्र

भूपिंदर सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपिंदर को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू करती थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपिंदर की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपिंदर सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपिंदर को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सब के बीच भूपिंदर सिंह।

भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन दो बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आरडी बर्मन से हुई, और उसके बाद आरडी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आरडी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्ण।

साहब बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

आरडी बर्मन के साथ भूपिंदर के गिटार का जादू आपको सुनाई पड़ता है 1975 में आई फिल्म शोले के इस गाने में।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आर डी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हस्ती।

0: तो ये लगता है कि जहां मिल गया।
1: फिल्म परवाना।

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत विलायत खान साहब का था, आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रीतम की।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाते थे।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। आप सभी को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। सावन की फुहारें चारों ओर अपनी खुशबू बिखेर रही हैं। कहीं भीगती गलियां हैं तो कहीं बारिश के गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। लेकिन इस खुशनुमा मौसम में भी एक दिल ऐसा है जो किसी अपने की याद में खोया हुआ है। मौसम मुस्कुरा रहा है मगर उसकी आंखें किसी के इंतजार में रास्ता देख रही है।

0: श्रोताओं, सावन का मौसम जहां प्रकृति को हरा भरा कर देता है, वहीं विरह के क्षणों को और भी गहरा बना देता है। बरसती फुहारें, बहती नदियां और घिरती काली घटाएं मन में किसी अपने की याद जगा जाती हैं। दूर बसे प्रियतम की प्रतीक्षा में बीतते दिन और लंबी लगती रातें इस मौसम की एक अलग ही कहानी कहती है।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर।

बरसात का मौसम यादों का मौसम भी होता है। खिड़की पर गिरती बूंदे, ठंडी हवा के झोंके और भीगती हुई शामें अक्सर उन लोगों की याद दिला जाती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कोई पुराना संदेश लेकर आई हो। मन बार बार उन्हीं बीते पलों में लौट जाना चाहता है।

जाए। इंतजार कभी आसान नहीं होता, लेकिन प्रेम की सबसे बड़ी पहचान भी यही है कि वह उम्मीद का साथ नहीं छोड़ता। यही उम्मीद मन को हर मौसम में जिंदा रखती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। सावन के इस रिमझिम में एक उम्मीद भी छुपी होती है, शायद कोई खबर आए, शायद कोई आवाज सुनाई दे, या शायद अचानक कोई याद ही दिल को सुकून दे।

बाहर सावन की रिमझिम है, लेकिन भीतर स्मृतियों का एक लंबा और नीरव मौसम पसरा हुआ है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया है, फिर भी कुछ चेहरे, कुछ आवाजें और कुछ एहसास दिल से दूर नहीं हो पाते। बीते हुए कल की धुंधली परछाइयां आज भी मन के आकाश पर मंडराती रहती है। एक अनजानी सी कसक, एक अधूरी सी चाह और एक गहरा सा खालीपन पंक्ति में महसूस होता है, और एक गहरा सा खालीपन हर पंक्ति में महसूस होता है। ये गीत उस मौन पीड़ा का स्वर है जो अक्सर आंखों से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बहती है। यादों का ये बोझ दुख नहीं बल्कि प्रेम की अमिट छाप बनकर जीवन के साथ चलता।

0: जिंदगी यादों में ही ठहर जाने वाली है। जब जब बादल गहराएंगे, दिल के खालीपन को छू जाएंगे। कुछ चेहरे धुंध बनकर आंखों में उतरेंगे, कुछ अधूरी बातें फिर से दस्तक देगी। बरसात की हर बूंदों में बीते लम्हों की, बरसात की हर बूंद में बीते लम्हों की आहट होगी, और हम मुस्कुराते हुए भी किसी अपने को चुपचाप याद कर रहे होंगे। बारिश की ये बूंदे यूं ही गुनगुनाती रहे, यादें यूं ही महकती रहें, और दिलों में बसी उम्मीदें हमेशा रोशन रहे।
1: हाँ।